0: To round this whole introduction to Raga Jaunpuri, let's get Khurshed Anwar on board to tell us a little bit more about this Raga.
1: Jaunpuri, a savri thaat ka khadav sampoorn, yani aroh mein chhay, aur avroh mein saat suron ka raag hai. Aroh mein gandhar varjit hai. Vadi dhevat aur samvadi gandhar hai. Gaane ka vakt. दिन का दूसरा पहर है यह राग पुराने ग्रंथों में नहीं पाया जाता इसे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने इख्तरा किया था इस राग की शक्ल असावरी से बहुत मिलती है मगर असावरी के आरोह में गंधार और निखार

दो सुर वर्जित हैं और जौनपुरी के आरोह में सिर्फ गंधार वर्जित है। इसके आरोह में निखाद बार बार और वाजे करके दिखाया जाता है, जैसे नीसा धानीसा माधानीसा, और यही इसे असावरी से अलग रखता है। पागारेसा और मापागारेसा जौनपुरी में ज्यादा लगाए जाते हैं और इस राग की अक्सरता ने पंचम के सुर पर खत्म की जाती है। पकड़ मापा धानी सा नी धापा मापा गारे मापा धापा, आरोह सारे मापा धानी सा अवरोह सानी धापा मा गारे सा।